प्रदेश में निर्मित तीन युद्ध को सेनाधीश अग्रे और संशोधित राष्ट्र

है कि भारत का हर युवा

somebody's video that

what you can eat.

ਦੇਖ ਕਰ ਜਾਦੂ।

मुद्दा तीन बजकर तीस मिनट पर नाची तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राव। मृत्युहीन प्राव नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा। मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठवालिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, कोरियोग्राफर टेरेंस लीज से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने में पुराने 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत संगीता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम।

1921 आडबक्कर 15 मिनट पर सुनिए द चित्रलोक आडबक्कर 45 मिनट पर समाचार 9 बजे आपके लिए रात 10 बजे छायांकित 10:30 पर घंटी जाएगा और रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संग।

पुष्प के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में चार दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हो तो श्री राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय दे राजा जनक का रविवार उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान के आसन दिए। दोनों चोरियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिखर हैं, उनकी आंखों में है प्रेम और शोक के आंसू।

0: में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल संदारा। आपसे बातचीत की है जयंत पंचेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनः स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वॉयलिन वादक पंडित एस एल संदारा। पंडित जी, वायलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है
2: जी।
1: वायलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ।
2: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं। और इस वायलिन की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गर्ज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, रवि मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा, तो उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब

0: पचास वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज में, और उस जमाने में इतने अच्छे अच्छे इससे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है।
1: जी की आवाज़ में होगा।
0: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे मैं ना बोले सांची बतिया।
1: जी जी, ये वो गीत है और उस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
0: जी,
1: आप उस झलक की बात,
0: उसकी बात कर रहा हूँ।
1: तो गीत की ये झलक जहाँ खासतौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर बात।

0: से सुनते ही चले जाए, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: गाने में इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है। फिल्म में अच्छे से काम हुए हैं इस वायलिन के साथ, और ये वहाँ से अगर शुरू करें आप रोशन साहब के ज़माने से, मदन मोहन जी के ज़माने से, या नौशाद साहब के ज़माने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं इस वाद्य को लेकर,

0: समूह में वर्णिन बैठा है। दोनों वर्णिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: इसी सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे भाई लक्ष्मीकांत जी जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे भाई जी का तो स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे भाई जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम प्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बम्बई में गुरु के रूप में सिखाने में, और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेज दिए हैं। जैसे शायद मुझे याद आ रहा शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो,
0: मनोज कुमार निर्देशित,
1: जी
0: और इसमें जो गीत है प्यार का नगमा है,
1: एग्जैक्टली
0: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का गीत बजाया है प्यारे प्रसाद ने।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाओ?
1: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाइए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहाँ जहाँ अपना वायलिन वाद

0: फिर लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहाँ जहाँ अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे व उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यही समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एक श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी मानी वायलिन वादक पंडित अशोक भंडारा। आपसे बातचीत थी जयंत पाटेकर ने।
0: भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की

0: देखिए पी एल संतोषी के बोल के पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने माने लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता और संगीत खुद की ऑफिसर ने कहा।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासू, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो, फिर तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही गीता पिता रोल करने में क्या मजा है।

सांस से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 मिनट अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो काफी।

बताना हमने ब्रेक के पहले आपको सुनवाया था, अभी हम 1950 में ही रहेंगे। फिल्म बाबुल का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे। एसक्यू सनी की ये फिल्म नौशाद के संगीत के लिए जानी जाती है। शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में जी जाना, शकील बदायूं के बोल

उदास संस्कर नहीं जो बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता। लता मंगेशकर की आवाज वृंदावन के मूल संगीत में राजमहल का था और

0: साल की जून मेरी गलती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान है योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: पूरे बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो सांस से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो काफी होता है।

के बंद दरवाजों पर चश्मे की है, खून से है क्यों भीगा, इसलिए फील अपना जख्म क्यों में खाया हूँ, पत्थरों को बना अंदर से सब पैदा हुआ। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बातों में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरी सोचने, और इस गजल के साथ साथ मेरी वजह से रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शहर पैदा होने में।

चाहे और ये चाहे सही बात है कि हालात पैदा करने से बहुत ज्यादा हम इस स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुझे, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और

achat vous suivi

सभी को करना चाहिए। पहला तो है सांस से रिलेटेड, सांस से एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए

मंगल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर

के क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। चंद्रकांत दासगुप्ता के साथ काशी नाहर आकाशवाणी कोलकाता।

ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

God.

सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। भारत के जो महत्वपूर्ण आधार है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टरों से 2.2 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वसंत ने कहा कि मिशन 1.2 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है

आंतरिक क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इससे देश निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $47 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप हैं।

की निजी अध्यक्ष के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

sign up to be

पत्नी भी उसके पास जाती है जिसमें वो उसे और नसीहतें उस घर को अपना बनाने की थी, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की थी, सब को अपना बनाने की थी। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

preencher la brecha.

तेरी तो मैंने अपने दोनों को करने दिया। नसीब ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और तारिक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही गीता पिता रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।

0: पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में डालेंगे। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में जनता की जायज समस्याओं का समाधान होगा।
1: भारत योजना के तहत रांची और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में नए लाभार्थी युवा और विभिन्न क्षेत्रों के तनवीर अहमद ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे देश में औपचारिक रोजगार और युवाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला एक
2: सफल बनाने के लिए हम लोगों को आदरणीय और जो लोग आए हैं यहाँ पर उन सबका धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है कामयाब होगा।
1: इधर सरायकेला खरसावां के

Ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt.

Because they're supposed to be so, so

प्राप्त स्कूल आज और कल खुलेंगे। शिक्षा परियोजना परिषद

किसी सेकंड लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी।

बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला क्या है, सांस से रिलेटेड, सांस से एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सेकंड अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो काफ़ी होगा।

थोड़ा सा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा बड़ा प्यारा शरीफ तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीम ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आते तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए वही दिशा पिता रोल करने में क्या मजा है हाँ वही करते रहोगे।

0: भाइयों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ रेसिडेंस या डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का पता चलेगा।
0: देश की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम से खाके थोड़ा सोते हैं तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है।

0: इस मंगलवार शनिवार की सितारें हैं मधुर शायर और गीतकार शकीला से
1: इन हालात पैदा कर दिए हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इसी समय की थी।
0: जो शाम

थ्रोन के लिए सोचा। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी,

मन की बात

0: है सभी साइड वो की है ये हकीकत है इसको बाकी लोग नहीं माने जितना चल रही है मानने के लिए तो ओपिनियन कुछ नहीं बता सॉन्ग राइटर के मैं दूसरों की बात नहीं करता आप 50% तो शायद हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और सबसे शून्य और सुंदर है बाकी आप 25% अगर बोलो तो क्रेडिट कंपोजर का ज़्यादा कुछ
1: ऐसी अद्भुत जाहिर

bazar, फिल्मों से लगाव पड़ गया। खासतौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और

कहां चला गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है फिल्में बनाने का, उनका अपना एक खास मुहावरा है और मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उसने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 की फिल्म अनुभव के मुख्य सिपाही थे संजीव कुमार और अनुजा। बातों में कहते हैं कि खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बड़ी काम अपनी फिल्मों में करते रहती है। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर

वो कहीं पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बाबू भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था पर उन्हें सरकार

तरजीह के लिए खास तौर पर याद की जाती है। बातों बचा क्या जाने,

0: खुश हैं आपके, जैसे पहली बार उनको ममता मिली
1: सन 1997 में बासु।

कैसी वास्तु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान

0: खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारती, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: मेरे बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है सांस से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सुबह सर अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए

0: योगीराज भारत भूषण भारतेंदु जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है सांस से रिलेटेड, सांस के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सुबह नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो काफी होता है।
0: काफी होता है।

0: No, we got it inside. May I have had it? Yes, I thought it's ready.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और बुलंदियों के पंख
2: आपका बिजनेस लोकल है या स्थानीय है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर दिशा
1: और अब तो आप घर तक
2: विभिन्न स्थलों पर विज्ञापन करना सुलभ और
1: बुकिंग के लिए संपर्क करें 8700001

that we see a

pessoa viva.

sua vida, né?

Christus zu lieben, das ihr Mitmittel tut,

J'aime ça.

भावनपुर उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेरा गांव में एक कार्यक्रम हुआ था। उन्हें भिन्न दिन से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतः एक छोटे से गांव से निकलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना, शामिल होना और फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक उनका पहुंचना संघर्ष, अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक अनूठा

जीवन इतनी ही मिठास की है ना। फिर भी इस भाग दौड़ में हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चेहरे पर सभी एक छोटी सी मुस्कान आपकी और आपसे मिलने वाले की सारी परेशानी को वहीं खत्म कर देती है। इस मुस्कान से पीछे छुपा होता है हौसला, जो मान ले तो मुश्किल और न माने तो आसान। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर की मेहनत के बाद भी हमें वो परिणाम नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। ऐसे में निराश होने के बजाय या उम्मीद लेकर आते हैं, डर कर कभी नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस अपना इरादा मजबूत रखे। इन सब के पीछे सबसे जरूरी होते हैं हमारे रिश्ते, हमारे अपने। अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपनों के लिए वक्त निकालना मत भूलिए। आज शाम आप घर से लौटे अपने परिवार के साथ रखकर एक कप चाय जरूर पिए और अपनों के साथ पाए हर उस लम्हे को महसूस करें, क्योंकि जब अपने साथ होते हैं तो जिंदगी का हर मुश्किल सफर बेहद आसान और खुशनुमा बन जाता है। इसलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ अपनी जगह पर रखें।

नवनिर्वाचित सरकार ने 2026 के हर साल 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस राज्य की ऐतिहासिक विरासत और

राज्य ने देखा, राष्ट्रगान लिखा गया और जिसकी माटी में वंदे मातरम का नारा गूंजा, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ के मिट्टी में शांति निकेतन की अभव्य शांति, सुंदरवन के रहस्य, रविंद्र संगीत और बाउल गायकों का संगीत दिल को छू लेता है। यहाँ का दुर्गा पूजा उत्सव पुरुलिया क्षेत्र का चौनीस यूनेस्को ने इसे समूह सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना है। और हाँ, रसगुल्ला, संदेश,

साफ दिखाई देती है। आज पश्चिम बंगाल दिवस पर उस मिट्टी को सलाम जहाँ हर कण में कला है, हर सुर में विद्रोह है और हर दिल में

शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रखा था इतिहास जब 2023 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल जीते थे। और पूरी तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग,

I do feel like

appreciated that I do that in people.

दूंगा इसलिए यकीन रखना और जख्म क्यों में खाया हूँ और खड़ों को मैं रूम से गया और लेट गया। मेरे बातों में रेडियो था, एक रजल बज रही थी, दो जमा दिलो

जान है तेरी लाज बचाओ। और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं सर उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द सुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे छोट लिए हैं। हालांकि ये भारत बहुत छोटी थी लेकिन उसके शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ और शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। लेकिन इससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी प्रेरण किया है हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश बादल का समा जमीन में सिक्के से छीन लिया आसमान, रिमझिम की आहट एक सपना पाया एक लड़की की मुस्कान में दिल खेल कर गया, हाथ में खेलता गुलाब और रोशन ईसिया और दिल का दीवाना कुछ कहना पड़ा, उस पर लगा जैसे यही है जहाँ वो बारिश वो जमीन वो आसमान। ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपके यहाँ हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती छोटी है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार का नहीं किया है और जब भी बारिश की बात

deux fois les trois ans à des gamins qui sont en même temps que c'est à venir dans le questionnaire, en ce qui va être carnaval. Ce qui va être prochain qui va aller, c'est le but de la préparation de la vie. Are you ready to be ready? You may be after Sunday, maybe. Actually, I think the actual food is in the food that is going to be garbage. Dagno or Ashman to be cooked up in the sun generator. Then he did it for him. So, to come with it, Ronnie Club will add in the Western to get basically a garbage to bad little bag only to be for her. और प्रकृति में हर तरह का संतुलन है। मौसम कब तक अधूरा है जब तक घमासान बारिश न हो जाए, लेकिन बारिश की कमी अभी भी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवाइए भाई। लेकिन आपकी जो नतीजे हैं वो ही एक खूबसूरत तक लाइए कराई है। हमारे देश को पहले की सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो है समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है। रिमझिम गिरेश सावन इसके बारे में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शायरी में वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती की शुरू में चक्कर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़ी तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और दिन का आसमान छाएगा तो दिल से पढ़े। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख दिया है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियाँ प्यार प्रकृति और संतोष के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास बिल्कुल छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताजा करना चाहें तो लिखते हुए बहुत ही कम शब्दों में ताकि ये बारिश के द्वारा आपके संदेश पढ़ सकें। तो बारिश की रूहानी एहसास पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो,

Tamam, bekle. Bu

faith

क्योंकि 200 मीटर के

ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ हमारे भीतर

I'm

is that actually right?

संदेश है और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का।

तो खाते तुरंत हो गए।

अगर हिब्रू इलेवन ट्वेंटी सत्र छह से चंद्र का सीमा का है पूरे गांव जाते चाहे शुभम सावित्री चाहे साथ ही शेरपुर जिला विद्यालय से मोहम्मद बकार करी

sinh là bác.

राजेन्द्र कृष्ण ने लिखा था शंकर जोगी संगीत इसे सुना रहा था रमाकांत शर्मा मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जलंधर से मॉडल कार्य करना सुधीर मेहतन सुनीता शर्मा और मानव कुमार ने

na terra, o que quer que se livre.

भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद मृत्युहीन

I'm just trying to

0: मृत्यु के अधरों छुपी है, छुपने के बाद क्या सब होगा?
1: मुझे भी

0: की अपनी आवाज बुलंद करने का मौका
1: नहीं चाहिए। सबकी बातें मुझसे ना निकाल देखता रहे देश भर में दिन पर दिन कैसे कैसे घटनाएं घटती जा रही है।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हुआ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी
1: तो फिर अपनी लाइन

0: vertu of not shifting there. Trust duration.
1: Trust. कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो।
0: संपूर्ण इस शब्द में जाने के लिए भिन्नता निश्चित निश्चित की गंध है माँ। ये तो सारे के लिए नहीं है। हाँ तो फिर से देखो निश्चित के अज्ञात किसी है प्यास जीवन
1: और राइट राइट बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ। क्या माँ हो माँ, तुम कभी बेंजामिन मरे हो? कुछ कुछ माँ हो

0: कर परीक्षा दें तो उसे अपने कक्षा से देख सकते हो।
1: अच्छा होगी कोई
0: हाँ?
1: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पत्नियों को समझ पाना मेरे लिए बहुत खुश है। मृत्यु देवी मृत्यु लोकना जीवन की है, मृत्यु के अधरों छिपी है क्या जीवन की है। गीत जीवन का सुनाने की मिली अभ्यास, संधि क्षण में पहुंच कर वे हुए घोर हताश। क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में जकड़ कर सीता उदेरा गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या

0: इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भाग के रहना पड़ रहा है। हकीकत यही है। बताओ इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हो।
0: अरे पढ़ने नहीं आई हो तो फिर

0: शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्वेच्छ सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
1: सर बात ऐसी है सर, मुझे तो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
0: ये चारों ओर से काम भी अभियान चल रहा है और इस कुत्तों का एक भी पिल्ला बच न सके।
1: ओके सर,
0: मेरा नाम स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को गलत तो नहीं जानता।
1: हमारे लोगों पर हाथ उठाकर

0: भेज तुम भी बाबा हो। मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए थे और ऐसे जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बाबू। आइए आइए मिस्टर बेकर। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार मिस्टर खाबरकर।
1: नमस्कार
0: भाई, अंदर आ जाओ ना।
1: माँ हम तुम्हारे वही जैसे हैं, इस बार जीवन की आशी को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
0: ये क्या तुम्हारी कविता है भाई?
1: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिन ने मैसेज दी है।
0: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूँ।
1: ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ टिस्से हैं और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम जैकर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और आप रॉबिन खबरकर हैं,
1: इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैंने भारतीय विश्व
1: हाँ बाबू, ये भारत में वंचित हो गए।
0: अच्छा अच्छा,
1: देखिए आप देखिए
0: बाबू,
1: बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
0: अरे इससे बड़ा नहीं जानूंगा मैं।
1: अच्छी तरह से जानता हूँ।
0: यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कर्म से खुद निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से निकली
1: संताएं।
0: नहीं कहिए, मुझे इतनी ताकत कहा।
1: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छुपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
0: देखिए आप इस तरह से मुझे ऊपर ना उठाने में से जगह। मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अगला।
1: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो,

0: रूप में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपने गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी तरह इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, जिससे रॉबिन खापा का सुझाव एकदम सही है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट न जाए, खासकर आम जनता से कहीं दूर न हो जाए।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेल कूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसा प्रतिवाद का रूप ले लिया
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए जिले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन खंडो उजुरी अथवा राष्ट्रीय बख्तर बंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: हमें दिखा कब से दर्द के साथ

की बात करता हूँ, मॉरिस की बात ले जा रहा हूँ, संजय से चाहे कर सकेंगे ना चाहूँ तो जरूर कर सकूँ। अगर फिर बात करिए तो और देर करना ठीक है, आइए।

Jesus.

0: तक की चमड़ी बदन पर लपेट कर खड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल खोल वो दीजिए हम लोगों को जो कुछ आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको
1: आप भी तो बता देंगे। पर हाँ सीधे साधे शब्दों में कही

रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का यह हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण पिछोरिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

के देखने को समझ नहीं है। इस बात में ये इतनी दिलचस्प थी कि आप खुद मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य से संबोधित है। जाने माने पेंटर अखिलेश की एक बात थी, जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा

0: करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रखता हूँ अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ा पढ़ा हूँ, मेरा एजुकेशन ऐसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीक में बच्चों को देखता हूँ और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूँ, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मतलब ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये आपको सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मैं अच्छी तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं है और मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे आपका नाम पहला ये कौन है, तुम जज हो भाई, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीज़ें बनानी पड़ती और वो टेक्निकल चीज़ें मैं अंग्रेजी में जानता हूँ। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, मैं बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में तो उसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो फिर मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ अपनी यू लिखता हूँ। हम अच्छा था, फिर मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियाँ थी ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें।
1: तो बच्चे को
0: हाँ अभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिली,
1: बिल्कुल
0: जज नहीं मिली, हम मेंटर हैं। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं किया, मैंने कहा भाई लेकिन मैं मेंटर, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे उसको सुधार सकते हो,
1: बिल्कुल
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है। अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस ही देख सकती है, बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है

0: कल की वापस आना है और बिस्तर पर लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, मुझे तो मैंने समझ लिया। लेकिन उनका जो राजा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं था। अब हम डिबेट के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे फोकस नहीं किसी गाना किस तरीके से उन्होंने ऐसी मदद की। दीपिका ने कभी एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन वो घाटा बड़ा बड़ा चेहरा तो दूसरा शॉट जो भरोसे है उसको जो धुआं निकल जाए वो एक्चुअली धुआं निकल
1: जाए।
0: तो देवजा असिस्टेंट उनकी तरह धोनी थी कि तुमने धोनी थी और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि गुरु की और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार कर सकती थी। तो सबसे घबरा हुआ इंसान हमारे सेट से वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला दो धोनी की से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को धोनी को अंदर रखती है, धूप अपने फेस से लेती है और वो गा रही है, वो फेस से फिर वो अपना बालों को सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं कर देता। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से, ताकि वो जली नहीं और वो कोयला है

0: धर्मा है और मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने बच्चे पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मैं पूरा एक लिस्ट है फोन पे। तो 2020 में मेरा कोई लिस्ट नहीं, एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि कितना मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं।
1: दो सवाल हो गए, एक तो बहुत ईजी है, दूसरा बड़ा कठिन है। ईजी सवाल ये है कि एक्टिंग वैक्टिंग करने का इरादा है आपका? लेकिन वो हीरो वाला आपको कैरेक्टर रोल भी करना
0: है, कैरेक्टर रोल ही पसंद है। और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो प्ले करते हैं, जो हीरो के नहीं है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना

on a journey.

बातें देखा था उसने मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है जिसके व्यक्ति मुझे धन संपत्ति और शौरत मिली है मैं उसको बांटू क्योंकि ये करंसी है ये करने के लिए लक्ष्मी है ये दुर्गा है ये सरस्वती है ये इसके पास में देनी चाहिए ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आपके जाएगा मतलब कंटिन्यूस फ्लो तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है और बहुत लोग जैसे शक्ति हो पुनीत हो बहुत बड़े बड़े ये तो सीधे जाने वाले लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं और अगर वो उसी उसी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है मैं किसी को भी अपना मना सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है मैं अपने पास रखना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो हम क्या है हम तो आज यू नो हैं कल भी लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है जो हमने

0: बहुत ही बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने क्रिएट किया है कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कम्फर्ट महसूस कराए, तो आपको मैं बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहूँगी, आपने मुझे बहुत कम्फर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने समझा किया बहुत मजा आया। और तो यू नो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ, रेडियो सुनते थे आज के बच्चे, शायद ये बहुत कम सुनने में आया कि विवेक भारती जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना, हम और उनको क्या है विवेक भारती, लेकिन हमें पता कि क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आ रहा तो मैंने किन्नी जी की बोला हाँ हाँ बोल रहा है, ये जो आपकी जो विरासत है, जो यू नो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना पसंद करना चाहूँ। तो थैंक यू सो मच
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था,
0: आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें शुभ चाहिए, कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर दे?

pray or watch

0: और सिचुएशन इतनी समय की थी।
1: You guys heard the list of the menu, but

Mire,

और लगभग 50 किलो सिंचाई

आज हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सवाल। पहले सवाल लिखिए, सवाल है फिल्म महाभूषण मोहम्मद वकील और जावेद हुसैन। मौसिकी है मदन मोहन की और रचना जावेद।

Ja, my name is Jennifer Mentis.

लेता है हर काम। बात हंसने और हंसाने की हो रही है तो हम आपसे कहेंगे मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूँ। मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूँ। ये हंसना और हंसाना तो मेरा हुनर है। सच्चाई ये है इंसान न कुछ हंसकर सीखता है न कुछ रोकर सीखता है। जब भी कुछ अलग सीखता है तो किसी का होकर सीखता है या फिर कुछ

गीगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर का विविधता केंद्र और आज मैं हूँ आपके साथ शशिजीत सिंह उमा पांडे। शशिजीत कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हंसने और हंसाने की। वो तो पहले

समझो छिपाने की तमन्ना है उसी, जाने देखा है उसे। आज शेष गीत में हम बात कर रहे हैं आवाज लता मंगेशकर, कमाल बरो, गीत लिखा भूपाली ने, संगीत से सजा था लक्ष्मीकांत गाना हमने लिया था जमीर फिल्म से, आवाज किशोर कुमार साथियों की थी, संगीत से सजाया था सपन चक्रवर्ती और गीत साहिर लिखाई का। इसके साथ ही कार्यक्रम शीर्षक गीत से मुझे यानी उमा पांडे को इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शीर्षक गीत, लेकिन 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जयपुर का प्रभाग के लिए है। हम ये कार्यक्रम

ਜੀ ਜੀ ਕਰਨ ਆਸਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹਮ ਜੀ ਜੀ

ya da mıncısı o

que se utiliza o utilizado sea.

के कार्यक्रम सभी सदस्यों से ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय जिलों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2000

जय माला, जय माला।

उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते हैं। वो मेरे पिता समान थे, मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। मदनपुरी जी से मुझे अब संगीत की दुनिया में आते हुए एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल में संगीत बहुत ऊंची पोजीशन रखता है, कमाल है। यानी उनका संगीत जैसे आपके रोम रोम में अंदर घुस जाता है, आपके दिल को छूता है, वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन हमें दी है कि हम बाबा पर रोकते हैं। उसी के फुवारे आसमान को छूते हैं जब लता जी

उनके दर्शन सही गए और जब आपके सामने हो तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसते भी सके, इसीलिए वो जब अपने

Amen.

तरह से अपने काम से दिल नहीं लगाते।

0: ज्यादा कार्यक्रम सुन रहे हैं। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष ज्यादा कार्यक्रम रिकॉर्डिंग।
1: लता मंगेशकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नाम से वाकिफ है। हिंदुस्तान ही नहीं इसका नाम दुनिया में फैला हुआ है। हवा की तरह लता जी वो गाने गाए हैं और इतने अच्छे ढंग से गाए हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये सही बात है।

होते हैं।

करने के बस इसलिए भी मायने रखता है कि अब जिस तरह की दुनिया बन गई है उसमें लोगों के साथ बहुत सारी सेहत की समस्याएं और मानसिक तनाव और दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में इस बार की थीम लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन देने की दिशा में एक संदेश भी है। आपको बता दें कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ

हिफाजत योग का दामन थामकर जरूरी तौर पर की जा सकती है। जब उम्र बढ़ती है तो शारीरिक रूप से हमें सक्रिय रहना है, मानसिक रूप से संतुलित रहना है और इमोशनली मजबूत रहना है।

कैसे साधन ऐसे शरीर के रूप में काम करता है जो शरीर के लचीलेपन को, उसके संतुलन, ताकत और मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। नियमित योग करें तो शरीर की गतिशीलता बेहतर रहती है, योग से संतुलन मजबूत होता है, तनाव को नियंत्रित करने में योग से मदद मिलती है। प्राणायाम और ध्यान मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में जो भूमिका निभाते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया में आज लोग योग को अपना रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारी जीवन शैली लगातार व्यस्त होती जा रही है। हमने अपने लिए समय निकालना

questo è il di dottrina sbagliata perché si situate in un'altra latina, Franz Menonti, già esce sette della musica che non si chiama perché Franz è संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने उस समय में इस दिन की कल्पना की थी ताकि लोग बिना किसी रोक टोक के सड़कों पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर संगीत बजा सकें और उसका आनंद ले सकें। धीरे धीरे ये परंपरा फ्रांस से निकलकर दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में फैल गई और आज ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है जिसमें पेशेवर और शौकिया दोनों तरह के संगीतकार हिस्सा लेते हैं। जहाँ भी वही बात सामने आती है, संगीत दिवस के लिए 21 जून इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन समर सोल्स्टिस होता है। ये दिन रोशनी, ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। संगीत केवल एक मनोरंजन नहीं है, संगीत कई स्तरों पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि संगीत तनाव, चिंता और उदासी को कम करने में मदद करता है और हमारी इमोशनल सेहत को बेहतर बनाता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो मन को शांत और खुश रखते हैं।

समक्षता को बेहतर बनाता है। इसलिए इसे बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भारत के शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत की बात किए बिना हम विश्व संगीत दिवस की बात को

इस शरीर को बहुत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम मेडिसिन की दुनिया की बात करें तो म्यूजिक थेरेपी का उपयोग आज डिप्रेशन, अल्जाइमर और कुछ दूसरी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस बहुत अलग अलग तरह से मनाया जा सकता है। एक तो ये है कि संगीत के कार्यक्रम पूरी दुनिया में आयोजित किए जा रहे हैं। फ्रांस में तो सड़कों, चौराहों और गलियों में संगीत के कार्यक्रम होते हैं। पेशेवर कलाकारों के साथ आम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर निकलते हैं और

स्कूल और कॉलेज खुले मंच पर आयोजित करते हैं। अमेरिका और कनाडा में भी यही हाल है। भारत में भी अब कुछ कार्यक्रम संगीत दिवस के मौके पर होने लगे हैं।

के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। पहला फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मनाया गया था। अनुराग स्मार्ट जॉर्ज ने 1909 में मदर्स डे से कैनेडा लेकर इसका प्रस्ताव रखा था। 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस मौके पर नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया था। आज फादर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 21 जून को जून के महीने का तीसरा रविवार फादर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। तो अनुराग स्मार्ट जॉर्ज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना आपको बताते हैं। वॉशिंगटन ने 1910 में अमेरिका के स्पोकेन में इसकी शुरुआत की थी। अपने पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट के सम्मान में, जो एक सिविल वॉर वेटरन थे, उन्होंने अकेले अपने 6 बच्चों को पाला था। इससे भी 2 साल पहले 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के फेयरमोंट में ग्रेस वोल्डन थिएटर में बोलोंगा खदान

سلام وكافي هذه عشرين في فيفا وورلد كاب

मौका है जब किसी पुरुष विश्व कप की मेजबानी तीन देश एक साथ मिलकर कर रहे हैं और पहली बार 48 टीमें खेल रही थी। इससे पहले पुरुष वर्ल्ड कप में 32 टीमें हुआ करती थी। दक्षिण के लिए ये खास तौर पर ऐसी बात है।

सबसे ज्यादा छह विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और 2026 में ये शामिल है। मैसी 26 मैच खेलकर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और जहाँ तक मैचों की बात है, इस बरस सबसे बड़ा उलट फेर जर्मनी के साथ हुआ। क्यूरासाओ विश्व कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है, उसने जर्मनी के खिलाफ ऐतिहासिक गोल दागा। जर्मनी को हिल गया, हालांकि जर्मनी ने ये मैच 7-1 से जीता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हराकर एक बड़ा झटका दिया है। इस मैच का स्कोर रहा 2-1। कतर ने भी सुर्खियां बटोरी। 2022 के मेजबान रह चुके कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल दागकर 1-1 से ड्रॉ कर लिया। ये टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। ब्राजील और मोरक्को के बीच एक बड़े मुकाबले की काफी चर्चा हुई। बहुत लोग इस मुकाबले का इंतजार

हफ्तों में पूरी दुनिया की जलवायु और पूरी दुनिया के मौसम चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े एल नीनो में से एक हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एल्बानी में मौसम और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर पॉल राउंडी का कहना है कि इस बात की पूरी आशंका है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ताकतवर एल नीनो हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये मानता है कि बहुत जल्दी ही एल नीनो के हालात बनने वाले हैं और ये कम से कम सर्दियों तक चलेंगे और इसकी ताकत और समय को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भीषण गर्मियां झेलनी पड़ेंगी और कई देशों में खाने पीने के सामान और पानी की किल्लत हो सकती है। दुनिया को इसे जलवायु से जुड़ी एक जरूरी चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। एल नीनो के ये हालात पहले से ही भट्टी की तरह तप रही दुनिया की आग में जी भरने का काम कर सकते हैं। एल नीनो असर है क्या? कुदरती तौर पर होने वाला जलवायु का एक ऐसा चक्र जो हर 2 से 7 सालों में अपने आप उभर के आ जाता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत वाले क्षेत्रों में भी मौसम बदल जाता है, यानी हजारों हजार मील दूर जो इलाके हैं उन पर भी

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे। वाचस्वर ममता सिंह। इस कहानी में अब तक आपने सुना
1: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगे बहनों थे। दोनों का विवाह मथुरा और दिग्गी दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें मेहनत की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगे। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते, भरा पूरा परिवार देश देश प्रसन्न होते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का दिग्गी बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज अपनी बहू को देख कर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू कुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखे किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल सुविचार और सुरुचि के चिन्ह बीतने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था, इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो अब मार्केट थी पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वो प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इस सारे रत्न पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का इच्छा होता है, यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं। कोई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है, 4-5 साल भी रह गया तो मानो मान हो जाऊंगा। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, आंखों में आंसू लाकर कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात के लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चे के बिना इनका जी वहाँ न लगेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेके चलो। दुलारी उसके साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करते ही रहती हो ना। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाग कर हलवा और पूरियां पकाई। जब से घर में आई कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देख कर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वो देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं, तो उसके जी में आता वो भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु ये ममता जिस खाने को खा कर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देख शुद्ध होने से रह लगती थी।

से देख जाना पड़े। जो जो समय निकट आता था उसकी दृष्टियाँ शिथिल होती जाती थी। वो कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती थी। बच्चे नए नए कुर्ते पहन नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर थोड़ा कर भाग जाते। दस बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा रहे थे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वो जुदारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना। लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका ही न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा रहे थे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। कई दिन तक प्यारी मूर्ख सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। जोखू कामचोर बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर लौट गया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को भी वो चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की खूब थी। धीरे धीरे खूब का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। घर में तो अब विशेष कोई काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और मांग चोटी की ओर से भी उदासीन न रहती। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये हाथ से आते ही उसके अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी सही से करने लगी। एक दिन जोखू हाथ से लौटा वो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता था। जोखू ने कहा, चार क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा दस मोट और खींच दो, सब की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ शुरू से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वो ही बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ से था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, चलो अब हाथ मुंह धो लो, आदमी जान रखकर काम करता है, मार मार करने से कुछ नहीं होता। खेत काम आदमी ने जाना जरूरी था, कल भी होता बिल्कुल। चिंता प्यारी बिगड़ रही है, फिर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें आखिर क्यों कूदती हो। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है, सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर उसे फेंक न लेता, फिर अखबारी तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। हाँ प्यारी उसकी सरलता पर हंस कर बोली, अरे तो मैं तुझे कह थोड़ी में रही हूँ पागल, अरे मैं तो कहती हूँ जान रख कर काम किया करो, अरे कहीं बीमार न पड़ जाओ, बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जोखू बोला, कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक दुखा नहीं, आगे के नहीं जानता, कहो रात भर में काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानू, तुम्हें अतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। हाँ जोखू झेलता हुआ

रोटी बनाकर खिला दो तो खा लो। प्यारी बोली, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी कुल्फी। जोखू बोला, हाँ सबसे सारी रात खा तो ही बीत जाएगी। प्यारी बोली, बको मत चिपका कर बैठा। जोखू बोला, जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठो। जोखू और प्यारी में चली हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत

क्या देखभाल नहीं करती? देखो ने जवाब दिया, तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारे दिन तो वहाँ बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार में मुक्त कर लिया। बोली, तुम इतने रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सदाई से नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, मालकिन तुम भी खूब कहती हो, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सदाई कर लो। हाँ प्यारी बोली, आज मेरी रसोई में खाओ ना, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, अरे नहीं मालकिन, नहीं, तुम बनाते बना

मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उससे 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। हाँ, अरे तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों न करूँगा? सब झुका देगा, कहते थे 2 शेर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, 8 शेर रह गए। एक दिन तौलो मारते तब मालूम होगा। अरे हाँ, तौला है बड़े खाने वाले, मैं कहने देती हूँ ध्यान करो को। हाँ, मजदूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हें। अरे तुम्हारी बला से मैं भी हलकान होऊंगा ना, ये देर किस दिन काम आएगी बला? प्यारी ने उसके कंधे पर से पावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर दिन से पहर रात तक साल में रहोगे और अकेले मेरा भी उगेगा। जोखू को भी उगने का अनुभव न था, कोई काम न हो तो आदमी पढ़ कर सो रहे, जी क्यों उगे भला? बोलो जी उगे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उगेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आ रहे हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़ कर कहा, अच्छा ये लो बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विरोध करते हुए कहा, अरे कहना क्या है, मैं पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेली मरती हूँ और 1 से 2 हो जाऊंगी। जो खुश माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात कही मानती, अरे किससे सगाई कर लू वहाँ, मैं ऐसी मोहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी बोली, ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू बोला, ये मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वो गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए, तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ही न किया बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया, बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू बोला, अभी मैं कहने लगूंगा तो गिर जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई, बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ोगी, तो फिर मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे से धकेलते हुए कहा, कहोगे तो सही है, मैं तो कहना ही छोड़ूंगी। हाँ, जोखू बोला, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत से चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो, बस ऐसी औरत मिलेगी तो सगाई करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया, उसने पीछे हटकर कहा,

0: में मासिक विशाल भारत सितंबर 1931 से प्रकाशित मानसरोवर मार्गरेट से संकलित उर्दू रूप मालकिन शीर्षक से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामी का तीसरा और अंतिम भाग भी आपने सुना। सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुत

silence.

मशीन का वो ये तो मैं हूँ ना बाकी, और सारी चीजों में तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना, तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही विचार विचार हो

अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला, तो उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बनाई, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन देते हैं। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी

देखती ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है।

फिर से बंद किया और सीरीज में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण माझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बातें की। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की

Bye-bye for anybody.

में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थान रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 88 से अधिक हो गई है। इससे देश निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि

的宝贝们，飞机准时

सुननी, जिनका नाम है लविन चौधरी, जिसका हसरत जयपुरी है, समीक्षा में शंकर जयपुरी।

0: दुनिया को सुधार देंगे, जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया मन की बात संसद

Je suis rentrée à 9h30.

more, but yeah.

to be drinking that kushbu. Woh jo sukh jaye, woh kahan samajhti hai? Man ki dahliz par rakhkar sharab yaadon ki, khat par chitti ki, andheri mein joosh padti hai. Woh koi shokh hasina nahi hai, par yun hi kabhi kabhi उदासियों के लिए आती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको? गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है। गम की सपना में खड़ी

तुम्हें है गोसाई।

begun. Monterey has opened.

स्वागत है छाया दीप में। कुछ कहानियां अधूरी थी, चंद मुलाकातें पूरी थी, बड़े खतरे दिल थी वो खूबसूरत सी चोर आती

सेकंड लाइन कश्मीर साहब के एक्सपी में मैं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक टीम बन

की राष्ट्रीय सेवा के प्रसंग प्रगतिको का कार्यक्रम ढलती जाए राज एफएम 100.8 में कहा कि ये सक्षम विशेष रूप से प्रविधा के लिए है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं और अब संपन्न होती है फ्रिक्वेंसी पर कल सुबह 5 बज कर करेंगे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शिवरात्रि जय हिंद।

की राष्ट्रीय सेवक प्रसन्न कुलगीतु का कार्यक्रम ढलती जाए रात FM 100.8 में कहा के लिए इस समय रात के 11 बजे हैं और अब संपन्न होती है फ्रीक्वेंसी पर कल सुबह 6 बजे पर करेंगे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम में तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए शिवरात्रि जय हिंद।